एक कै हरी हरी ए ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनु एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है क्योंकि जिसका विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया जिसका हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिसका हर श्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरि हरि। आन अवर सिंजान न करी ओ परमात्मा अपने भगत नूं गुरु राही नाम देवांदा है जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

जप भी करदा है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखन दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखते हैं।

साहिब फरमान करते हैं कि सारा कुछ परमेश्वर की कृपा नाल गुरु तो ही प्राप्त होता है।

मतलब करैक्टर है मनुख दा और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा जो शांति प्राप्त होवेगी ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवां ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती इतना गाया प्राणा करके इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया उन्हां दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है।

0: Seguir amaron a Panamá.
1: ये ओह जो दे ये पूरे दे ते जाओ रावना होना तो गुरु ग्रंथ साहिब की ये वाणी आप उच्चारण कर लें आपको सतनाम
2: वो पूरा कर।

साखी है। जिन्हों कवि ने कविता दे रूप विच पेश कीता है और इस साखी दा सारा पिछोकड़ इको ही है।

एक सपना है हजूर बाणी विच भी बख्शिश कर दिया न सपने सेती चित मूर्ख लाया कोई मूर्खा कदी सपने भी सच्चे होए हन सोच ए संसार भी सपना है जितने तियां पुत्र धन दौलत महल मारियां जदों प्राण पंखेरू उड़न गए एक शिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा इसलिए यह सपना है सपने नाल चित लाउन वाला मनुख कदे तोड़ नहीं अपड़े इसलिए हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि श्वासा नू सिमरन दी माला बना श्वास श्वास हर नाम जप बिरथा श्वास मत खो क्या जाने ए अंतकाल ए श्वास मत हो किसे नू की पता है कि जेड़ा श्वास मैं जप रहा सतनाम श्री वाहे गुरु इस तो अगला श्वास आना कि नहीं आना इसका किनू पता है इसलिए हजूर बख्शिश कर देखन भाई सास ग्रास बंदगी कर श्वासा का कोई पता नहीं एक बुजुर्ग बाबा शरीर छड़न लगा सारा परिवार आके बेनती करन लगा बाबा जांदियां जांदियां कोई चंगी सुमति दे जा ए बुजुर्ग बाबा कहन लगा मैं अपनी होंद विच अपने जीवन विच तुहानू लखां ही कमा के दिते हन हुण मेरे श्वास समाप्त हो गए हन ते कुछ खर्च करके कुछ पैसे दे के ते श्वास लियाओ तां मैं तुहानू सुमति दे सकदा हां पर इस सारे परिवार ने नीवियां पा लईयां आख्या बाबा ए श्वास तो किसी भी कीमत तो मुल नहीं मिलते फिर ए बुजुर्ग कहन लगा फिर यही उपदेश है कि इना अमोलक श्वासा दे नाल नाम दे लाला दे वणज करना तुहाडा संसार ते आउणा भी ते संसार तो जाना भी तनता दे योग हो जाएगा ऐसा ना होवे ए लाल गुआच जान ते फिर तू लभदा फिरे ए लभण वाले नहीं हन।

इतना रोगी नहीं होता जिन्ना के बहुता खान वाला रोगी होता है। भुखे घट मरते ने बहुते खान वाले ज्यादा मरते। रसना सतगुरु जी उपदेश कर रहे ने, ए रसना तू अन रस राज रही। अन रस कहते ने होर रस, होर रसा विच ते पै गई, ऐ भी खा लवान ओ भी खा लवान। किसी की निंदा चुगली की, किसी नु माड़ा कहा, किसी नु गालां कढ़िया, माड़ी गल करके किसी का घर बर्बाद कर दिता, ये काम तो तू किया। पर ऐ रसना तू प्रभु का सिमरन नहीं किया। खाण दे भी रस हैं, झूठ बोलना भी तो रस है, निंदा चुगली करनी भी तो रस है, ये सारे रस तू

हाँ, जितने भी कहन सुनने वाले अपने अपने मना विच चाती मारी दिन दे विच कितना झूठ बोल दे, कितनी निंदिया चुगली कर दे, कितना कुछ इस जबान दे नाल खाने हैं, कितनी बुरियाई कर दे हैं, ए ते हर बंदा जानदा। ते आओ पहला विचार करिए, जेड़े अपनी जुबान दे नाल झूठ बोलते ने, निंदिया चुगली करते ने, खान दे चस्के हन जुबान, उन्हां बारे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की उपदेश करते हैं कवि।

अपने जबान नु समझाइए ऐ रसना जे गुरु महापुरुष ओ कहंदे ने अकाल पुरख शरीर दे जितने रोम ने इन्हां नु जबान

तू मेरी हुण पालना कर। पर वाल्मीक तू पाप कर पावे पुण कर, पाप दी कमाई लिया घर विच पावे नेकी दी कमाई लिया, पर अंत वेले मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता। घरवाली ने पूछया पलिए लोके तुहाडे वास्ते मैं पाप करना कि अंत वेले तू मेरी सहायता करी। ते साथ संगत घरवाली ने भी एहो गल कही, मेरे माता पिता ने तुहाडे लड़ लाया, तुहाडा फर्ज है मेरी पालना करनी, इथे दुख सुख विच मैं तुहाडे नाल हां, पर जद उस दरगाह विच लिखा

मरा मरा जपदिया जपदिया ऐसी मालक दी मेर होई मिर्दी लग गई मन जुड़ गया ए रसना जेड़ी मरा मरा कहती सी कृपा हुई मालक दी मरा मरा तू हुण राम राम हो गए समा बीते ओही आरिया समाज दे सत रिखी फिर उस पासे आए राम राम दी आवाज आ रही है इधर उधर देखिया बंदा कोई नजर नहीं आंदा एक मिट्टी दा ढेर है उत्ते कास उगे अपनी शक्ति नाल जाने इस ढेर दे थले बालमीक बैठे मिट्टी हटाई स्वास दसवें द्वार चढ़े सन महापुरुषा ने अपनी शक्ति नाल स्वास

महारिषि वाल्मीकि बन गए। सत्संग इस रसना दे नाल माड़ा बोलांगे जीवन माड़ा होवेगा, इस रसना दे नाल

बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ए लफज लिखाए जेड़े के इतिहासिक लफज हन। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने नाम से सिक्का

जिस थान ते हर आदमी नू शरण मिलदी है, जिथे एक सुंदर नगर वसदा है, अते जिस दा शिंगार ए पागां वाला तख्त है, उस थान ते ए सिक्का बनाया गया। भाव कि ए जड़ा सिख राज दा सिक्का गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दी कृपा द्वारा मैं चालू कर रहे हां, इस राज विच सब बराबर ने, इत्थे सारिआं नूं सत्कार मान इज्जत मिलदी है, और ए सिक्का गुरु दी कृपा द्वारा सिख राज दा पहला सिक्का

चालू नहीं होया एदे पिछे बड़ी कालना। आओ ए जानन वास्ते थोड़ा जा इतिहास नु देखिए कि किस तरह सिख राज दा ए पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शुरू किया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसवें गुरु जिन्हां महापुरखां दी आत्मक अवस्था इस शिखर ते सी कि ओ धर्म अते देश दी रखिया लई अपना सरबंस वार

अपने बच्चियां नू कुर्बान कर दिता, अपने प्यारे साथियां नू वारी वारी मौत दे मुंह च धकेल दिता, अपना धन दौलत संपत्ति सुख चैन जवानी सब कुछ इउं स्वाहा कर दिता जिवें कोई यज्ञ करन वाला किसे महान हवन कुंड विच आहुती ते आहुती दे जा रहा होवे। जिस दी महानता दा ए हाल सी कि ए सब कुछ कर दिया होया, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने मथे ते वट नहीं पाया, बुल्लां विचों हाय नहीं निकली, कदी अखां तों अथरू नहीं वगाए, कोई साधारण आदमी नहीं सन। उस साधारण आदमी भावे किन्ना भी देश भगत क्यों ना होवे, निसंदेह अजिहा नहीं कर सकता जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया। अजिही महानता केवल उन्हां महापुरुखों विच ही होंदी है जिन्हां सैकड़े जन्म योग साधन बतीत कीते होण, अते फिर जिहड़ा महापुरुष शिखर ते पहुंच जांदा है ओही ही भविख नूं देख सकदा है, जिस नूं साधारण नजरां वाले नहीं वेख सकते। इस करके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज

जेड़ा के वैराग दी नींद विच सुत्ता पिया सी उसनु वैराग में नींदर तू जगाउण आए ओ आदमी जी दा नां सी माधोदास। इस तू पहला कदी उसका नाम नारायण गिरी भी सी अते इस तू पहला उसके माता पिता उसनु लक्ष्मण देव कहंदे हुंदे सन। इस लक्ष्मण देव नारायण गिरी माधोदास बैरागी जेड़ा जंगल विच बैठा योग साधना करदा है इसनु वैरागमय नींदर तू जगाण वास्ते युग पुरुष धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नादेड़ वाल गोदावरी नदी के किनारे वाल

थोड़ा जहा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत रजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर रजौरी जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इना दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिया लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नू मार सुटिया पर ओ हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नू तीर मारिया हिरनी जड़ी सी मरी उदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के वो भी मर गए। इना छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी उदे मन ते अजेहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया पहला सन्यासी बनिया उसका नां नारायण गिरी पै गया फिर बैरागी बनिया योग सिख्या ले फिर माधोदास बैरागी बन गया। कई जगह हुंदा होया दखण

आश्रम बना के रहन लग पे है। अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पे है। इस गोदावरी के किनारे बहुत समा योग साधना करदया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़िया ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधो दास दे आश्रम पहुंचे ते माधो दास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधो दास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधो दास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधो दास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इथे ना बैठो। पर गुरु साहब ने कहा असा जिथे बहना सी बह गए हैं क्योंकि गुरु दे कौतक गुरु जान गए। उधर चेले जंगल विच भजे गए। माधो दास बैरागी नू जाके कहन लगे तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरुष आके बैठ गया, लाओ लश्कर भी नाल है। ओदे चेहरे अगे किसे दियां अखां नहीं हुंदियां। तां माधो दास गुस्से विच आ गया, कहन लगा दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उन्हूं पलंग तों थले डेग देंगा और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हैं पलंग नूं उल्टाण दी कोशिश कीती। पर माधो दास बैरागी पलंग नूं उल्टा ना सकया। जद माधो दास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टाण वास्ते, पलंग ना उल्टा सकया तां समझ गया कि मेरे पलंग ते जिहड़ा बैठा है वह कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधो दास बैरागी अपने आसन तो उठया और ए देखण वास्ते आश्रम वाल तुर पिया।

साधना विच मगन रहा सी। इस तपस्या द्वारा उदी आत्मा जाग पई सी, उस दे अंदर पवित्रता सी, सफाई सी, उच्चता सी। इस जागृत आत्मा ने गुरु महाराज जी नु वेखदे सार ही पहचान लिया। उस महापुरुख बारे भी इस माधोदास बैरागी ने सुनिया। वो महापुरुष गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां ने तिलक अते जंजू दी रखिया ले दिल्ली चांदनी चौक विखे अपना सिर दिता।

उसने सिर चुका दिता। अते इस तू बाद धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्ना ने बड़े प्यार नाल माधो दास नू देखे है।

अमृत भरी मिठी प्यारी अति मुस्कुरांदी आवाज विच आखिया मैं गोविंद सिंह हां बैरागी ने फटिया फटिया अखां नाल उन्हां वल तकिया जिन्हां नूं

एक होर हिरनी भी है जिसनु कड़ी कड़ी शिकारी तीर मार देनी। ओ हिरनी है ए धरती साड़ी जन्म भूमि जिसनु जुल्मी अपने पैरां थले लताड़ दे पए ने जुल्म पे कर दे ने माधोदास बैरागी ने ए सुनिया होया सी और सुनिया भी कि गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु तेग बहादुर जी महाराज

जोरावर सिंह फतेह सिंह जिन्हां दी उम्र 6 साल 7 साल दे लगभग उन्हां नूं जिउंदिआं नूं नीहां विच चिण दिता गया। ते सारियां गल्लां माधो दास ने सुनिया, ओदियां अखां विचों

माता सती ने उन्हां नूं कहा, शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारिआं नूं बुलाया है पर ना मैनूं बुलाया ना तुहानूं बुलाया, परंतु वह मेरे पिता का घर है इसलिए मैं जाना चाहनी। शिवजी भगवान ने कहा, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने तो भगवान ने जान की इजाजत दी। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलों में पहुंचे।

शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया ता दशक ने अगू सगा होर किया, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा ता उन्हां ने उसे वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरो वीरभद्र वगैरा पैदा हुए, ते जिन्हां ने आग्या मंगी ता भगवान ने कहा जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर कीता। ता उसे वक्त उन्हां ने दशक प्रजापति दा सिर वड के यज्ञ दी अग्नि विच सुट दिता। हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग इउं नसण लग पए जिउ प्रचंड महातांडव नचदी होई परलो आ गई होवे। इसे तरह एक कथा शिव पुराण दी, शिवजी भगवान ने

पंजाब वल तोरे आ जेड़ा क्यामता जगाउंदा पचाल लियाउंदा खून दियां नदियां बगांदा होया पंजाब वल वध तुरे आ। किसे ने पुछया बंदा सिंह तुसी ये की कर रहे हो ता बंदा सिंह बहादुर ने कहा मैं अपने वास्ते कुछ नहीं कर रहा मैं जालमा दा नाश कर रहा उन्हां किलिया नूं ढा के ढेरी कर देंगा जिन्हां विच जुलम हुंदे ने ओह शहर तबाह कर देंगा जिन्हां शहरां विच मजलूमां नूं जालम तंग करदे ने। इह कहिंदा होया बंदा सिंह बहादुर पंजाब नूं

एक ऐसा शहर सी जिदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है ता सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचया अपनियां फौजां दे नाल और इस सरहंद वल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहर दिया निगाह नाल देखया, वो नजारा उन्हां दी अखां दे सामने आ गया। इस सरहंद

मकान ढा दिते, शहर नूं ढा ढेरी कर दिता। वजीर खान ओ भी मारिया गया, उहदे वजीर अहलकार जरनैल सिपाही सब मारे गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद ते फतेह कीती, अते जिस वक्त सरहंद नूं फतेह कीता ओदी इट नाल इट वजा दिती, और फिर फतेह दा डंका वजा के ए नहीं कहा कि मैं जितया, हाथ जोड़े ते कहन लगे, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप दी कृपा द्वारा साहिबजादे दी शहीदी दा अज मैं बदला ले ले। और सत साल जुल्म दे खिलाफ तबाही अते बर्बादी दा ए तूफान बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उठाई रखिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर बेशक आप ना रहा, पर तुरकां दी हकूमत नू उसने मिट्टी विच मिला के रख दिता, अते जदों फतेह कीती, तुरकां दी हकूमत खत्म कीती, ता उस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फिर सिख राज दा पहला सिक्का चलाया और उसते अपना नाम नहीं गुरु दा नाम लिखाया। सिक्का जद हर दो आलम तेगे नानक साहिब अस्त, के ए सिक्का दो जहाना वास्ते है। गुरु नानक दी तलवार अते गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा

करुणालय है अर्थालय है खलखंडन है महमंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो।

ठंडे बाटे दी पहल नू छक लिया। उस सवा सवा लख दे नाल लड़न दे काबल हो गए, उस विच इतनी शक्ति भर गई।

बेनती करन आए ने के साडी रखिया करो। फिर सच्चे पातशाह की हो सकता है, वचन कीता बेटा कोई पूर्ण महापुरुष अपना बलिदान देवे ता इन्हां दे धर्म दी रक्षा हो सकदी। ते अगों बेनती कीती हथ बन के

राग गौड़ी दीपकी विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस दी जाति शाड़व संपूर्ण वादी षड़ज संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

स्वय करके अर्थात समुद्र की मत कह हो काट वनस्पति सगरी लिख बहु के लेखन काज बन हो सारसता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो काल कृपाण न विनती काल कृपाण न विनती ना तो तुमको सब नय कर हो बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न कूट पराद हमारे खंडो कूट पराद हमारे खंडो अनक विधि समझाओ हम अज्ञान अलप मत थोरी।

ओक में या सीखने के गंगाराम जागदी ज्योत मेरा गुरु है अंतरगामी है और तेन माया चाहती है ना। इतने बावली साहब की सेवा हो रही, दो तरह की सेवा इतने है, एक निष्काम ते एक साकाम। साकाम सेवा किसे कामना नाल कीती जाए, जेड़े इतने करते हैं उन्हां नूं अठियानी रोज मिलती है, दोवेरे का प्रशादा लंगर। कई ऐसे भी प्यार वाले गुरमुख ने जेड़े निष्काम सेवा कर, उन्हें तेरी मर्जी, चाहे साकाम सेवा कर चाहे निष्काम। साकाम सेवा किसे कामना ना पूरी हो जाती, और जिन्होंने निष्काम सेवा की है उन्होंने की मिलता है। यारी साध संगत, साकाम सेवा भी कदे जाया नहीं जाती। जो गुरमुख तन मन धन नाल गुरु कर दी से, गुसाई तुलसीदास जी ने लिखिया है ना, तुलसी देर न कीजिए भजिए नाम सुजाए, लोक मजूरी देते हैं क्यों राखे भगवान। किसी बंदे का कम करिए भी मजूरी दे, रब किवें रख ले, भगवान किवें रखेगा। पांडित जी लिखे जाके सिमरन सब कुछ पाइए तो बिरथी किसी भी। जेड़ा गुरमुख एक कदम भी गुरु वाल रखता है ओदा फल भी जरूर मिलता है। बाबा जी तो बदल करते सन, जे गुरु ने प्यार का फुरना ही बना लीए ना तो ओदे बदल भी बख्शिश बख्शिश। चंगा रामा उन्हें तेरी मर्जी, केड़ी सेवा करना चाहे सोचन लग गया। अठानी रोज वाली सेवा कर, पर जिन्हें लखा गिने उन्होंने वास्ते अठानी चीज चीज ख्याल आया चलो मना निष्काम सेवा कर। सीधा लंगर च आ गया। गंगाराम लाहौर दे रहण वाला है, अज धन गुरु अमरदास पातशाह लंगर जूठे पांडे पे हमारे सेवा कर दे। एक महीना बीत गया, दो महीने, तीन महीने, पर कदे भी सतगुरु सचे पातशाह जी ने आके नहीं पूछा तू कौन है, की सेवा करता है, किस वास्ते कर। पर गंगाराम मन नूं समझांदा है, मैं गुरु अंतर जामी तू लगा रह, जे गुरु कर दी सेवा मिली है तां तू करी। गंगाराम नाले जूठे भांडे मांजदा रहिंदा है ते नाले पढ़दा रहिंदा।